to be called or considered as a liar when he communicates, when he forwards, when he quotes, whatever he hears. जो मैसेज आ रहा है आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी मैं ग्रुप में पहुंचा दूं बस या अय्युहल लदीन आमनु इन जाअकुम फासिकुन बिनबअइन फतबयनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुसबिह फअसबहतुम अला मा फअलतुम नादिमीन. ओ बिलीवर्स, व्हेनेवर एन अनगॉडली पर्सन, व्हेनेवर अ सिनफुल पर्सन, whenever an immoral person brings a piece of information, brings a piece of news to you, verify the authenticity of the thing that he's bringing in. Verify the authenticity. यानी बता ये दिया गया है, चीज़ को आगे forward नहीं करना है जब तक कि यकीन ना हो कि जिसको forward किया जा रहा है वाकयतन वो सच्ची बात है. कितने लोगों के रोजे बातिल हो जाते हैं. मैं नहीं कहता वो रोज़े बातिल नहीं होते कभी कभार, फ़िक्ही हवाले से नहीं कह रहा, बेचारे नहीं जानते, वो समझ रहे होते मौला का कॉल है. लेकिन जो भी अब देखिए फैशन पेजेस, पाकिस्तान के फैशन पेजेस वगैरह देख लें, और भी हर चीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हें फ़रमाया, जो भी उनके दिल की बात होती है उस पर मौला का नाम लगा दिया जाता है. देर इज़ नो कोटेशन, हवाले की तो बात ही नहीं होती ना, देर इज़ नो हवाले. यानी आप कम से कम चलें नहजुल बलागा, देर इज़ नो नहजुल बलागा, देर इज़ नो गुररुल हिकम, there is no this book or that book, there is no kafi malla hazrul faqih amali, leave those books, right? At least there must be some sahih muslim, sahih bukhari or something, right? Has sayings of amir al mu'minin too, kallimun nas ala qadri uqulihim, bada mashhoor ma'ruf qawl, it's in bukhari, it's there in the shia books too, al kafi, right? There are some unanimous hadith too. When you're talking to the people, talk to them based on the intellect, based on the intellect that Allah has given to them, right? Very important, my dear brothers and sisters. You do not become a tool for the enemy. You do not become a tool. And हम लोग ऐसे हैं कि हमें कोई जॉब पे रखे या ना रखे, हम खुद ही उसका काम करना शुरू कर देते हैं. Sometimes, you know, we are mashallah, you know, cheap labor with its all meaning, right? We want to forward, okay, forward. And that's why I believe you. कभी कभी इंपॉर्टेंट मैसेजेस चले जाते हैं, कोई अगर भेज भी रहा होता है वॉइस मैसेज है वो, क्योंकि इतने फॉरवर्डेड मैसेज भेजते हैं कि मैं बंदा सोचता है कि ये आज भी कोई आया हुआ होगा फॉरवर्ड, 10 15 20 25 जमा हो जाते हैं. बट व्हाट आई मीन टू से, यू डू नॉट हैव टू बी द न्यूज़. अल्हम्दुलिल्लाह एवरी बिलीवर हैज़ स्मार्टफोन इन देयर हैंड, दे कैन गो एंड वेरीफाई द न्यूज़ देमसेल्फ, बट डू नॉट, बिकॉज़ समटाइम इट्स गोइंग टू ब्रिंग लोअर मोरल. When you are just forwarding whatever the enemy propaganda is, whatever the propaganda is from this person or that person, everybody has its own interest when they are writing a news or when they have the piece of information. It's very difficult to be neutral in this world, right? So it's very important for us, my dear brothers and sisters. We do not. That's a practical etiquette. And I trust you and I believe and I have this belief. Inshallah, once we start following this, a lot of things are going to get easier. You know, sometimes if you, galti se aapne himmat karke pooch liya, what is the source of the information, my dear brother? You know, we don't have information. It was forwarded from this WhatsApp group, or that WhatsApp group, and this is our whole information. And unfortunately, then you know the effects of the fake news, right? Very important. We're living in a very difficult time. It's important to keep the morale of the believers very high. Coming to the third step, coming to the third responsibility. Keep the morale and keep the confidence of the believers very high. Shahadat e Karbala mein hui thi, 11 imamon ki shahadat hui hai, hamare 12ve ki bhi shahadat hai. Laysa minna illa shahidun, this is from Imam Hassan al-Mujtaba, his salatu wassalam. Sheikh Sadooq has quoted, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Laysa minna illa shahid, no exceptions. Everybody from the blessed family of the Prophet, they are not going to leave this world, but they would be martyred. Shaheed honge. Laysa minna illa shaheedun. Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam. Imam Radha alayhi salatu wasalam is quoting in Uyun al-Akhbar. Right? But what is important here? Shahadat hai, but keep the hopes of the believers high. Ali ibn Abi Talib. I don't want to go into a lot of history. Sometimes it's controversial. It's okay. But go to Al-Kafi. Go to Kishi. Ikhtiyar Ma'arif

Their haq is over you first and then your own haq. Pray for them. Pray for the difficulties that they're going through. You know, hum log momineen mein mashallah ek achhi baat ye hai, jahan jaate hain mashallah acche khase imam bargah azad abad kar lete hain. Aise hi hai, kuch zarurat ke tahat hote hain, kuch aap samajh gaye. Samajh rahe to hamari khasiyat ye hai ki hum shaitan hum par hi extra time lagata hai. जब एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो लड़ते भी हम ही माशाल्लाह इधर उधर थोड़े ज़्यादा ही हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए. दैट शुड नॉट बी द केस इन नमल मोमिनून इख्वा एज वी ऑल रिमेंबर. बट स्टिल कीप ऑल द डिफरेंसेस असाइड. दीज नेशनल बाउंड्रीज डू नॉट मीन एनीथिंग व्हेन द क़ायम इज गोइंग टू रिपीयर. वी ऑल विल बी वन बॉडी अंडर द फ्लैग, अंडर द बैनर, अंडर द लीडरशिप ऑफ द क़ायम ऑफ आल मुहम्मद. इज़न्ट इट? Ammar ibn Yasir, Banu Makhzum, Abu Dhar, Banu Ghaffar, Salman from Persia, Khalid bin Sa'id bin Asf, Banu Umayyah, Abu Ayyub al-Ansari, jo sabko ek jagah jama kar dete hain, wo Muhammad aur Ali Muhammad alaihi wasalam. Allahumma salli ala محمد ابن ابي بكر بنو تيم هاشم المرقال بنو زهره different tribes. आपस में शक्ल देखना गवारा नहीं है लेकिन जब अली से वाबस्ता हो गए तो जान छड़क रहे होते हैं. Our identity is what وسماكم المسلمين. Allah has termed us what Muslim. And within Muslim, يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. You and your Shias, inshallah, they are going to be the victorious ones, inshallah, on the day of judgment, in this dunya, inshallah. For us, that matters the most. And then we come to the fifth point, inshallah, and that is. ये point बड़ा खतरनाक है लेकिन मैं हिम्मत करके आपकी खिदमत पेश कर लेता हूँ. जज्बात अपनी जगह. But we have to refer to the experts. We have to refer to our maraja. We have to refer to what's the community leaders here to devise a better approach of how to go through these things. Parwardigar ne aapko ulama diye hain, nemat hain, inki qadar kijiye. Ulama diye hain aapko. Mujh jaisa banda to aapka khoon garma ke chala jayega. Bata raha hu main aapko. Fir main hi wahi nahi aaunga jahan bulaya hoga aapko. Par yahi hai na. तरावी पे सबको लगा दिया, खुद कभी नहीं पढ़ी. ऐसा ही हुआ. जाके आप खुद पढ़ लीजिए किताबों को. निअमतुल बिदअतु, क्या खूबसूरत बिदअत है. सबको लगा दिया, खुद साइड से निकल गए. ऐसे ही कभी नहीं पढ़ी उन्होंने मस्जिद में आके. देखिएगा आप कभी किसी की किताब भी पढ़ लीजिए. देखिए मैं खून पे तो गरमा सकता हूँ लेकिन खून नहीं गरमाना सरकार. सिर्फ यू हैव टू गिव द होल सोल्यूशन. And that are going to be the community leaders, the ulama, the numaide of the maraja. You might have difference of approach. None of us are equal. But let me be not naive that I start talking about the policy that the Shias of the Canada need to have, the Shias of the Toronto need to have. Ye unke liye chhod dijiye. जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है अलेमान की खिदमत में. मुझ जैसे बंदे सिर्फ वही बात कर सकता है जो यूनानिमस हो. बस नो कंट्रोवर्शियल थिंग. मौलाना शुड सेंड एन ईमेल, व्हाई आर दे नॉट डूइंग दिस. लीव इट अपॉन देम. गो एंड टॉक टू द अदर चैनल्स दैट आर द राइट चैनल्स. सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग टू डू एनी जस्टिस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सिर्फ फितना फैलेगा. मैं अपने 15-20 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ. एक बंदा भी तब्दील नहीं हुआ. लड़ाई होती रही, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे. जब तब्दील होना होता है तो आप पर्सनली जाके बात करते हो, वन ऑन वन एहतराम से बात करते हो, तो लोग में तब्दीली आ जाती है. जिसने नसीहत की लोगों के सामने, उसने नसीहत नहीं की, उसने जलील किया है. 10 लोग बैठे हुए, मैंने किसी को गलती करते हुए देखा. एंड आई केम इन, सुपर मुजाहिद पर्सन, यू डिड रॉन्ग. अगर उसने प्राइवेट में गलती की थी